0: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो यसको के अनअफ त के छैन छैन
1: यसको त्यो लाइन त
0: जोड्नु ए हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो डिमगो डिमगो होइन हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
1: यतै माथि यतै कता जोडिया हुन्थ्यो।

Hello.